तंत्री प्रकर्षम दुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्त चरितं न वनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचाम रम्यम् शेषाद्रि शेखरधिभूतमसु प्रभातम् भृङ्गावणीचमकरन्दरसानुविरिध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

तेजसि भगवती वंदे जगन्मातरम् स्वामी सुशील सुलभाषितपारिजात श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। आनुपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्पकौ।

शुभेच सांग ते मी सर करली ना मान्य सॉन्ग होत सर की मैने ब्रेकअप कर लिया ई सॉन्ग होत सर की ए दिल है मुश्किल मूवी नुंच अंडी ई सॉन्ग नी अजित सिंग गारू युनिता गांधी गारू आलपिंचारू ई सॉन्ग ते मी कोसम वच्चेसिंदी विनी आनंदिंचंडी।